0: बेन धीरज को ना कर रहाओ। सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभ तुमरे दर्श बेन सुख नाही। वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध सरन प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा कर पंदरवा, पड़ताल एक ओंकार सत गुर प्रसाद। बेकार माया माद सोयो, बेकार माया माद सोयो। सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठार्यो। तद ही कर जावे लोभ बिख्या बिखै लागे, हेर वित चित दुखाही। खिन भंगुना कै मान माते, असुर जान है नाही। रहाओ वेद शास्त्र जन पुकार है, सुने नाही डोरा। निपट बाजी हार मूका, पछतायो मन पूरा। दान सगल गैर वजह है भरिया, दीवान लेख ना परया। जेह कारज रह ओला, सोए काम ना करया। ऐसो जग मोह गुर दिखायो, तौ एक कीरत गाया। मान तान तज स्यानप, सरन नानक आया। आसा महला पंजवा, बा पार गोविंद नाए। साध संत मनाए, प्रे पाए गुण गाए। पंच नाद तूर बजाए रहाओ, कृपा पाए सह जाए दरसाए। अब रात्या गोविंद स्यो, संत सेव प्रीत नाथ। रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मन दृढ़ाए। रहसाए नहीं आए, सह जाए मन निदान पाए। सब तजी मन की काम करा, चिर चिर चिर चिर भया। मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावह। मोहे तुम बतावह, नानक दीन शरण आए। गल लाए आसा महला पंजवा।
1: इन्हां शब्दां दे विच, क्योंकि इहदा सिरलेख पड़ताल है, जिहड़े विश्राम आउंदे ने विद्यार्थी जनां ने समूह संगत ने, उहनां नूं ध्यान दे नाल सुनिया होवेगा। जिवें जिवें विश्राम लाए गए हन, उसी तरह ही पाठ करना है। कई पंक्तियां छोटियां ने, कई वड्डियां ने, कईयां दे विच दो दो विश्राम तीन तीन भी आए ने, पर जिवें पाठ कीता गया है उसी तरह ही उत्थे विश्राम ला के पाठ करना है, अग्गे भी ध्यान रखना है। हाँ जी,
2: कुल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच ये पहली बारी पड़ताल आई है, इस करके बेनती है। कुल 55 पड़ताल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच, 55 पड़ताल ने। ते पड़ताल का अर्थ हुंदा है बार बार मोड़ मोड़ के उन्हां पंक्तियां नूं गाउणा। सो कुल गिणती पड़तालां दी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच 55 है। यह भी जानकारी वास्ते आप जी ने याद रखना।
3: रागी जथियां वास्ते जां जो संगीतक संसार है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਅੰਤਰਾ ਤਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਅੰਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਪਕ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਾ ਦਾਦਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਕੈਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਤਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਠਵੇਂ ਤਾਲ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਠਵੇਂ ਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜਤਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਪਰਮਾਰਥ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ।

0: संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावाओ अन दिनो प्रभ त्यावाओ भ्रम भीत जीत मिटावाओ निध नाम नानक मूरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु खिनहु किरपा साधु संग नानक हार रंग लायो
1: राग आसा महला पंजवा घर सतारवा आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कहिया सो चित धर हां आन स्यो तोर फिर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोह सार हां पग नहीं चल हार हां गहडियो मूड नर हां

0: साध उत्तर अवकट सरवर नावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो आभ मोरे भरपुर धार रहिया सब ठौरी रहाउ सच ब्रत नेम न काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाद लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुभर सरवर मैलुन धोवै जैस्यो राता तैसो होवै
1: दूसरा पाठ मैल ना धोवै ए प्रोफेसर साहब सिंह जी ने मैल ना धोवै पाठ वखरा करके अर्थ किया पर संप्रदाय मैलन तो वही है।
0: सच मन कारण तत् बिलोवै सुभर सरवर मैलुन धोवै जैस्यो राता तैसो होवै आपे करता करी सो होवै गौर है वसीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत विभूत चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै अंतर ज्ञान महारास सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रास रसिया मत एक भाई तख्त निवासी पंच समाय कार कमाई खसम रजाय अवगत नाथ न लखिया जाय जल मह

गुण गाओ। गुरु सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वसिया सुख दाता, अनदिन बाणी नामे राता। मेरा प्रबलाय ताको लागै, होमै मारी सबदी जागै, एथै ओथै सदा सुख आगै। मन चंचल

तेरा तू गोसाई एक घड़ी मह थाप उथापे जार वंड देवै भाई रहाओ कहा सो घर दर मंडप महला कहा सो बंक सराई कहा सो सेज सुखाली कामण कहा सो सेज सुखाली कामण जिस वेख नींद ना पाई कहा सो पान तबोली हरमा होया छाई माई जिस इस जर कारण घनी विगुती इन जर घनी खुआई पापा बज हो हुवै नाही मुया साथ ना जाई जिस नो आप खुआए करता खुस लए चंगियाई कोटी हू पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनया ताया थान मुकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कुर रुलाया कोई मुगल ना हुआ अंधा किन ना परचा लाया मुगल पठाना भई लड़ाई रण मह तेग वगाई ओनी तुपक तान चलाई ओनी हस्त चिड़ाई जिन की चीरी दर्ग है फाटी तिना मरना भाई एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी पटियाणी ठकुराणी एक ना पेरन सिर खुर पाटे एक ना वास मसाणी जिन के बंके करी ना आया तिन क्यो रहन बिहाणी आपे करे कराए करता किस नो आख सुनाइय दुख सुख तेरे भाणा होवै किस थै जाए रू आईय हुक्मी हुक्म चलाए विगसै नानक लिखिया पाईय एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवा अष्टपदिया जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा कूड़कमा वह आदमी बंद है कर बारा जागहो सूते हो चलिया बनजारा रहाओ नीत नीत कर बंद यह जे रहना हुई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही क्या करहो है होसी सोई तुम रोवहो गे ओस नो तुम कौ कौन रोई धंधा पिटे हो भाई हो तुम कूड़ कमावहो ओह ना सुनई कतही तुम लोक सुनावहो जिस ते सुता नानका जा गाए सोई जे घर बूझै अपना ता नींद ना हुई जे चलदा लै चलिया किस संपै नाले ता तन संचहो देख कै बूझहो बिचारे वणज करहो मकसूद लै हो मत पछो तावहो अवगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् प्रावहो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावहो ता वाह पारी जानियहो लाहा लै जावहो कर्म होवै सतगुर मिलै।

मन भावई चले सदार जाए अंक समावई सच्चा साहेब मन वसै सच्चा साहेब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाईया दे तोट ना होई अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावै पत्थर की बेड़ी जे चढ़ै भार नाल बुढ़ावै आपनड़ा मन वेचियै सिर दीजै नाले गोरमुख सब गोरमुख वस्त पछाणियै अपना घर भाले जम्मण मरना आखियै तिन करतै किया आप गवाया मार रहे फिर मरण ना थिया साई कार कमावनी धुर की फुरमाई जे मन सतगुर दे मिलै किन कीमत पाई रत्ना पारख सो धनी तिन कीमत पाई नानक साहेब मन वसै सच्ची वडियाई आसा महला पहला जिनी नाम विसारिया दूजे भरम भुलाई मूल छोड़ डाली लगे क्या पावह छाई बिन नावै क्यों छूटियै जे जाणै कोई गुरमुख होए ता छूटियै मनमुख पत खोई रहाओ जिनी एको सेविया पूरी मत भाई आद जुगाद निरंजना जन हर सरनाई साहेब मेरा एक है अवर नहीं पाई किरपा ते सुख पाया साचे परथाई गोर बिन कने ना पायो केती कहै कहाए आप दिखावै वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाइय भी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सही बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाइय हर नाम ना लेवै ता की कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै जेही सेव कराइय करनी पी साई आप करे किस आखिय वेखै वडियाई गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए नानक सिर

मैं टेक आधार तू दर सेवक पर दर सेवक दरबान दर्द तू जान ही भगत तेरी हैरान दर्द गवावही दर्ग है ना महदूर गोरमुख जानसी वेला सच परवान शब्द पछाणसी सत संतोख।

चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारै सो जिणै गुर शब्द विचारा जो अंदुलै हथ टोहनी हर नाम हमारै राम नाम हर टेक है निस दौत सुवारै जो तू रख है त्यों रहा हर नाम अधारा अंत सखाई पाया।

पूरे गुर ते सतसंगत उपजाय सहजे सच सुभाय बिन संगति सब ऐसे रह है जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे न जाननी बिन नावै सब चोर एक गुण विहाज है औगुण विकण है गुर कै सहज सुभाय।

है ना संजमी, फिर है उतवताए, नदर करे जिसे आपने तिसनों भाव नी लाए, सत संतोख ए संजमी मन।

चरण कमल बोहित पहे लग सागर तरियो तेह पीटियो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो नेह।

0: कोई उड़े उपमा ताकी की जय, जा का अंत न पाया, सेवा करह सेई फल पावह, जिनी सच कमाया। गंगा ज्ञान बुझह जे कोई, पढ़िया पंडित
1: हाँ
0: सोई।
1: जी, रुकियो जी। जिस तरह पहला बेनती की जा चुकी है भी अक्षरों की तरतीब विच फर्क है, थोड़ा जा नोट कर लेना। जेड़े अक्षर आ चुके ने, सस्सा भी आ चुके है, सब तो पहला ईड़ी भी आ चुकी है, ते ऊड़ा भी आ चुके है। ते पहली लाइन दा आड़ा ते हाहा, पहली लाइन दे अक्षर ने ना ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, आड़ा ते जड़ा हाहा है वो अखीर विच दर्ज किया सतगुरु ने। पर जड़ी कक्के वाली लाइन है ओदा पंजवा अक्षर जो हुण आया है गंगा है, आपां गंगा बोलते हैं ओदा सीधा। ते ये जड़ा अक्षर आया है ये पंज की तरतीब तो है, ते पंजवें स्थान ते वर्णमाला दे विच, पर सतगुरां ने सब तो पहला इहदा उच्चारण कर दिता है। बाकी दे चार अक्षर कका खखा गगा घग्गा बाद विच आउंदे ने, बाकी जिहड़ी विचकारलियां पंगतियां ने चचे तो लैके पप्पे तक उहनां दी तरतीब विच कोई फर्क नहीं, वो उसे तरह है जिस तरह अज भी असीं पढ़दे हां। एक बेनती नाल ये है, जिहड़े हिंदी पढ़े ने उहनां नूं थोड़ा पता होवेगा, हिंदी दी जिहड़ी वर्णमाला है उहदे विच अक्षर दा नाम नहीं लिया जांदा, केवल अक्षर दी आवाज लई जांदी है। उत्थे सस्सा नहीं केवल सौ कहा जांदा, कक्का नहीं केवल कौ कहा जांदा। पर गुरमुखी जां इह वर्णमाला जिहड़ी 35 अक्षरी आपां कहिंदे आ, इहदे विच सतगुरां ने अक्षरां दे नाम रखे ने, जानी कि अक्षरां दे नाम सानूं दित्ते ने भी इस अक्षर नूं केवल सौ नहीं कहना, इहदा नाम सस्सा है, इहनूं केवल पौ नहीं कहना, इहदा नाम पप्पा है। जानी कि सतगुरां ने सब कुछ साडी झोली पाया है, जिवें पातशाह कहिंदे ने साचे साहिबा क्या नाहीं करते रहे, दोने पक्ष सतगुरु दे घर विच ने, आपां इत्थों ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा उस्ताद दुनिया दे विच होर कोई नहीं, खास करके सिख वास्ते। सो ये बेनती ते भी गौर करना। चलो जी अगे जी।

कृपया मम मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया काया भीतर अवरो पढ़िया मम्मा अखर विसरिया काया भीतर अवरो पढ़िया मम्मा अखर विसरिया यय जन्म न होवी कद ही जेकर सच पछाण गुरम।

0: स्वर्ण मंडल घर आया
1: पाया
0: आन दिन राता मन बैरागी स्वर्ण मंडल घर पाया आदि पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन थिर नारायण आसन बैसन।

आगम त्यत आगम पुरे कहो कहत बिद जाइय राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइय राम सच शब्द कमाइय निज घर जाइय पाइय गुणी निधाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सभना प्रधाना जप तप कार कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइय नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइय गुर साकरो रत

इतफाक सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला बख्शिश करनी बच्चियां नू दीर्घ आयु गुरसिखी जीवन उच्च विद्या दी दात माता पिता ते वडेरियां दी आग्या पालन दी सुमत बख्शिश करनी कारोबारां विच वाधे करने किरत कमाइयां विच बरकत।

आपे सार करे नानक नाम ध्यान दिन जिकर वास है जग जग शोभा हुई पौड़ी तू करन कर समर्थ है करते मैं तुझ भी नहीं आवना कोई।

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोह।

कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सोवे

चारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीरथ

आए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है।

प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन निचले आसन प्रभु के सिमरन अनहद चिनकार सिमरे से जन जिन को प्रमया हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन तारी सब तरना

0: या प्रसादता रूप रस खुबस है।
1: संत प्रात मीत बंता संग से
0: जे प्रसाद पी वह शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: या प्रसाद पोगे सब रसा।

0: अस्तर भगत साध की शरण
1: नानक जब जा जीवे हर के चरण
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दर कोई रे
0: मिथ्या नेत्र पे

0: मंथन अंतर सिमरन गोपाल आप दिल रहे अभरा नाम जपावे भगवती भगवंत भक्त का रंग मनते बिन से सगला परम सौ संग पापा मल खोवे भगवंत की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक

अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै आपस को जो भला कहावे सर्प की रेंजा का मन होए जब लग जाने मुझते।

0: कह के अवधूत बरने के विभूत करने
1: के राजन प्रवाह के तरमंत जा है के अशोक बरने के सर्वा पढ़ने
0: के जगतन कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्म

0: समलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
1: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया
0: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक दवैया
1: दानव देव गनेंदन सचर पुत

पितर वग कति प्रणवत नानक हुकम पछाण सुख होवे दिन राति सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

0: सबको दिया गणत नाच बदन बंद भवाए सोए पै करत नचे सबको नाच नाच हसे चले से रोए उड़ ना जाही सिद्ध ना होए
1: चन कुदन मन का चाओ नानक जन मन पाओ ते ना मन पाओ
0: पौड़ी ना उतरा दिन भाए
1: नानक ना जाइए जिन

इतनी ही हाजी प्रवान कर ली हो भुलना चुका देखे मैं बख्शना साध सन बख्शन हार हो और सब गज के फतेह बुलाइए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।

कट कट के पट पट की जानै, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचया गुर भये सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिलक भ्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ,